गुरु बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। प्रथम

सज्जन सच्चा पाति साहु सिर साहा दसाहु जिस पास बैठिया सोहिया सब ना दा विसाहु सज्जन सच्चा पाति साहु सिर साहा दसाहु जिस पास बैठिया सोहिया सब ना दा विसाहु सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी।

हर अस्थिर शिव सुख समघा, हर हर नाम भजियो पुरखोत्तम, सब बिन से दालद दलघा, पौ जन्म मरणा मिट्यो गुर सबदी, हर अस्थिर शिव सुख समघा, मेरे मन भज राम नाम अति पिरघा, मैं मन तन अर्प धरियो गुर आगै, सिर वेच लियो मुल महगा, रहाऊ

फिर पशुताने हाथ फल घा हार राख राख जान किरम तुम्हारे शरणागत पुरख प्रत पल घा दर्शन संत देह सुख पावे प्रभ लोच पूर जान तुम घा तुम समरथ पुरख वड्डे प्रभ स्वामी

मोकौ कीजै दान हर निमघा। जन नानक नाम मिलै सुख पावै, हम नाम विटहौ सद घुमघा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सूही महला चौथा। हर हर नाम भजियो पुरखोत्तम, सब बिनसे दालद दलघा। पौ जन्म मरणा मेट्यो गुर सबदी, हर अस्थिर सेव सुख समघा।

शिव भय एक गए एक फेर रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है ब्रह्मा और विष्णु के ते भेद और पुराण के ते सिमरत समूहन के होए होए।

सच्चा तुद तखत सिरसाह पातशाह निचल चौरी सत पौड़ी वड्डियां वड्डा पार तेरा मर्तबा रंग बिरंग ने।

राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजन हारा सब जी तुम्हारी जी तू जिया का दातारा हर त्यावह संत हो जी सब दुख विसारण हारा हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाना एक दाते एक भेखारी जी सब तेरे चोज विडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हाओ तुद बिन अवर न जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आखे वखाणा जो सेवह तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा हर त्यावह हर त्यावह तुद जी से जन जुग मह सुख वासी से मुक्त भए जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी जिन निरभौ जिन हर निरभौ त्याया जी तिन का भौ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक करह हर पूजा जी तप तप है जप है बेअंता तेरे अनेक पढ़ बहु सिमरत सास्त जी कर किरिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुद जे वड अवर न कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निःचल करता सोई तुद आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करह सो होई तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सह का जान ओई आसा महला चौथा तू करता सचियार मैडा साई जो तौ भावै सोई थीसी जो तू देह सोई हो पाई रहाओ।

सब तेरी तू सबनी ध्याया जिसनो कृपा करह तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मनमुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया तू दरिया सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी अजंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल जिसनो तू जाना एह सोई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाने जिन हर सेविया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर न कोय तू कर कर वेखह जानह सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला तित सरवरण पई ले निवासा पानी पावक तिन है किया पंक जो मोह पग नहीं चल हम देखा तह डूबी अले मन एक न चेतस मूढ़ मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ ना हो जति सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुगदा जन्म पया प्रणवत नानक तिन की सरणा जिन तू नाही विसरिया आसा महला पंजवा पई परापत मानुख देहरिया गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया अवर काज तेरे कितै न काम मिल साध संगत भज केवल नाम सरंजाम लाग भवजल तरन कै जन्म बृथा जात रंग माया कै रहाऊ जा

एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूरन होए चित्त की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सब तुम कावहो, आप हाथ दे मोहे बचावहो। सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सब करतारा। मोर अच्छा निज कर दे करिए, सब बैरन कौ आज संगरिए। पूरन होए हमारी आशा, तोरे भजन की रह प्यासा। तुम है शाड कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहाऊं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास निवरिए। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जू करिया हो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारी साहेब।

संत सहाय प्यारे, दीन बंध दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाय ब्रह्मा बाप तरा, काल पाय शिवजू अवतरा। काल पाय कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो। आदि अंत एकै अवतारा, सोई गुरु समझिया हो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बद कियो। काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पशानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पशानै, काट काट के पट पट की जानै। जब उद करख करा करतारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब आकरख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन सृष्टि सब तारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आदि अनिल अनादि असंभ। ताका मूड उचारत भेदा, जाको पेव न पावत बेदा। ताक कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कश भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप आपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तुहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एकै रूप अनूप सरूपा, रंक पयो राव कही भूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, उतपुज खान बहुर रच दीनी। कहूं फूल राजा हुए बैठा, कहूं सिमट पयो संकर इकैठा। सिगरी सृष्टि दिखाए अचंभव, आदि जुगादि स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगर। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलीश करो रणकाता। जे अस तुज तव सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हुए मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यै है, ताकि काल निकट नह है। रक्षा होय ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो, ताकि ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह स्वै सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास ते ताहे उबारा। जिन नार नाम तिहारो कहा, दार

सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न माने ओ सिमृत शास्त्र वेद सब बहुभेद कहे हम एक न जाने ओ श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहे ओ सब तो हे बखाने ओ दोहरा

सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया भरपूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। मुंदावणी महला पंजवा थाल विच तीन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब आधारो जे को खावै जे को पुंचै तिसका होए उधारो एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख उर धारो तम संसार चरण लग तरियै सब नानक ब्रह्म पसारो। सलो

आहु जिस पास बैठिया सोहिए सबना दावेसाहु सज्जन सच्चा पातशाहु सिर साहां दैसाहु जिस पास बैठिया सोहिए सबना दावेसाहु सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी ऐसा नाम रतन निर्मोल को पुण्य पदार्थ पाया अनेक जतन कर हृदय राखिया

रहाउ। रसना रमत सुनत सुख श्रवना, चित चेते सुख होई। कहो पीखन दोय नैन संतोखे, जह देखा तह सोई। रसना रमत सुनत सुख श्रवना, चित चेते सुख हो।

सतगुरु बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे, सतगुरु बचन तुम्हारे निर्गुण।

0: पौड़ी बड़ी हो वडाया पार तेरा मतबा रंग प्रंग ने कना जापन करतबा जिया अंदर जियो सब किसे जान ला सब किसे तेरे वस तेरा घर भला तेरे कर आनंद वधाई तुद घर माण महत्ता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिसै जत कता नानक दासन दास तुद आगे बिनवता।
1: श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवसरा दुर्दाई दाया खेलै सगल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचे धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़ै के दूर जिनी नाम त्याया गै मसकत कहार नानक ते मुखी जेले केती छुटी ना।
2: वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

अहिंसा में अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत शाड विखै बिख खाई, माया मोह परम पै भूले, सुत धारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो सरनाई। एक अरदास पाठ कीरत की,

दर्शन परसे गुरु का जन्म मरण दुख हो वैसे पतख संबंधी नूर अरसह कुरसह तुदृठे सच्चे पात सहा मल जन्म

जिस पास बैठिया सोही सबनांदा सजन सच्चा पात साहो सिर सांद जिस पास बैठिया सोही सबनांदा सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी।

अनक जतन कर हृदय राखे रतन न छपै छपाया हर गुण कहते कहन न जाई जैसे गूंगे की मिठाई रसना रामत सुनत सुख श्रवना चित चेते सुख होई

पुरन कर्म होए प्रभ मेरा हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखै बिखखाई माया मोह परम पै भूले

0: का नाम श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे असराज की तुनी श्लोक महला पहला बलहारी गुरे अपने देवहाड़ी सदवा जिन मानस ते देवते की करत न लागी वार महला दूजा जे सौ चंदा उगव है सूरज चढ़ है हजार एते चानन होंदे आ गुरबिन घोर अंधार महला पहला
1: नानक गुरु ना चितनी मन अपना सुचेत छुटे तिल बुआड़ ज्यों सुन जाई अंदर खेत

अपने आप साथ अपने रचियो तो एक कुदरत साजी करा सन डिठो जाओ दाता कता आप तू दूसरे वे करे पसाओ तू जड़ो इस सबसे दिल ऐसे जिंद गवाओ करा सन डिठो जाओ करे आप सन डिठो।

0: सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लोह सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फुरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुदा कह लख करोड़ सच्चा सब तान सच्चा सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची साला सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच त्यायन सच जो मर जमे सो कच ने कच महला पहला
1: बड़ी बड़ियाई जा बड़ा नाऊ बड़ी बड़ियाई जा सच ने आऊ बड़ी बड़ियाई जाने चल थाऊ बड़ी बड़ियाई जाने लाओ बड़ी बड़ियाई बुझे सपाओ बड़ी बड़ियाई जा पुछ नंदात

विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जीव विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नाग फिरे जलत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड विडानी विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद।

गावे राजे राणिया बोलै आल पताल लटके आके मुंदड़े लटके आके हार जितन पाई नानका से तन हो मैं छार ज्ञान गली ढूंढी कथना कड़ा सार करम लैता पाई है पर हिकमत हुक्म खो।

नात्र निरंकार है, न लइए नरक न जाइए। जीव पिंड सब दिसदा देखा जे अगवाइए, जे लोड़े चंगा अपना कर पुनो नी सदाइए। जे जरवाणा पर हरि जर वेस करे दी आइए, को रहना भरिए पाइए को रहना।

सतगुर किने ना पायो बिन सतगुर किने ना पाया सतगुर विचार रखन कर प्रगटाक सुनाया सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन मिचो मोच लाया उत्तम में विचार जिन सच्चे सिउ जगलाया जग जीवन दाता पाया जग जीवन दाता पाया।

कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार, कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहननहार, कूड़ काया कूड़।

यह मीठी जी माहे हिताने बाल बंच छप कर तो पावा पेखत सुनत प्रभ अंतर जामी शील धर्म दया सुच नासत आयो शरण जी के दानी कारण कारण समरथ श्री धर

काय अल्प सुख बंधन, कोट जन्म कहाँ दुख पाओ, सिख्या संत नाम भज नानक, राम राम।

रंच करेत खेत निर्मत दुर्लभ देह सवार तरी खान पान सौदे सुख पुंचत संकट काट विपत हरी मात पिता भाई अर बंदप भोजन के सब सूझ परे भरत मान होवत दिन प्रतनित आवत निकट बिखम जरी रे कुनहीन दीन माया किरम सिमर स्वामी एक करे कर कह लियो कृपाल कृपा नित नानक काठ परम परे रे मन मूस बिला मैं गर्भत करतब करत महामगना संपदोल चोल संग चूलत माया मगन परमत कुगना सुत बनता साजन सुख बंदप तासो मोह बड़ो सो कना बोयो बीज अहंग मम अंकर बीतद आद करत अगना मृत मंजार पसार मुख निरखत पुंचत भुगत भूख भुखना सिमर गोपाल दयाल सत संगत नानक जग जानत सुपना।

माया मत कहाँ लो गारा, शतर न पतर न चौर न चावर, बहती जात हृदय ना बिचारो, रथ न आसन न गज सिंघासन, शिन में त्यागत नांग सिधारो, सूर न वीर न मीर न खानम, संग न को दिष्ट निहारो, कोट न ओट न कोस न छोटा, करत विकार दहु कर चारो, मित्र न पुत्र कृतर साजन साख, उल्टत जात

0: मान दानमक जोहन हित चीत दे ले ले पारी साजन सैन मिथुत पाई ताहों ते लै रखी निरारी पावन पावन ऊरक मावन ए बिद करत औतंजारी कर्म धर्म संजम सुचनेमा चंचल संग सगल बिधारी पस पंखे बिरख स्थावर बहु बिद जोन परम्यो अत पारी खिन पल चसा नामनी सिमरिउ दीना नाथ प्राण पासारी खान पान मीठस भोजन अंत की वार पोत कथखारी नानक संत चरण समुद्रे और माया मगन चले सब डारी।
1: ब्रह्मादिक शिव संत मुनीसर रसक रसक ठाकुर गुण गावत इंदर मुनिंदर खोज ते गोरख तरन गगन आवत पुंतावत सिद्ध मनुख्य देवर दानव एक तिल ताको मर्म न पावत प्रिय प्रप्रीत प्रेम रस भक्ति हर जनता के दर्श मावत इसे त्याग आन को जाचा मुख दंत रसन सगल कस जावत रे मन मूर सिमर।

आकाश नामावत बिष्टा अस्त क्रिम उदर परयो है। दह दिस ताए महाबिखिया को पर तन छीन अज्ञान हरयो है। जोबन बीत जरा रो

0: प्रेम भगत उदरे से नानक कर कृपा कर कृपा संत आप करियो है।
1: गुण समूह फल सगल मनो

0: दुख हर सर्व रोग खंडन गुणकारी। काम क्रोध मद मत सर तृष्णा बिन सजाहे हर नाम उच्चारी। इशनान दान तापन सुच किरिया चरण कमल हृदय प्रभतारी। साजन मीत सखा हर बंद जीतान प्रभ प्राण उधारी। ओट गही स्वामी समर्थ नानक दास सदा बलहारी।
1: आवधि कट्यो ना जातो प्रेम रस चरण कमल संग। दामन बंध्यो ना जात विदे मन दर्स मग। पावक जर्यो ना जात रहो जन तूरे लग। नीर ना साकस बोर चले हर पंथ पग। नानक रोग दोख अग मोह सिदे हरि नाम खग।
2: उद्दम कर लगे बोह पाती बिचरे अनक शास्त्र बोह खटुआ। पूजा चक्र करत पसम लगाए तीरथ बोह परमते। सूखम देह बंधे बोह जटुआ। बिन हर भजन सगल दुख पावत जो प्रे

अमृत छाट बिख बिख खाई माया मोह परम पै पुले सुत दारा से प्रीत लग एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत ते।

बियाए अहनिस सहज सोभाए दर्शन परसै गुरु के जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसमदी नूर अर सोह कुर सोह चटिया तुद डठे सचे पातशाह माल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सचा पातशाह सिर शाह दशाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसाह सज्जन सचा पातशाह सिर शाह दशाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसाह सतनाम

ब्रह्मन् जे नरदा आराध्या तेने पाओ सागर तरिया जिस मनुख पह करो बेनती सो अपने दुख भरिया पर ब्रह्म जिन हृदय आराध्या तिने पाओ सागर तरिया।

पंजन हर राया साध के चरण तोर जन बांछ सुख नानक एहो पाया फिरत फिरत तुमरा द्वारे आया पंजन हर राया साध के चरण तोर जन बांछ सुख नानक हो पाया वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुजरी महला पंजवा जिस मानुख पह करों बेनती सो अपने दुख भरिया पार ब्रह्म जिन हृदय अराध्या तिन भाओ सागर तरिया।